0: भारत का वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे है।
1: सामिन, आप हमारे नशियात को शॉर्टवेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्ज़ के अलावा तुर्कसैट 3A ईस्ट और 4A वेस्ट सेटेलाइट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।

0: पोस्ट में लिखा, यहूद दुश्मन यूनियन से अखलाकी फैसले की तवक्को करना ऐसा ही है जैसे सूरज के मगरिब से तुलू होने की तवक्को करना। उन्होंने मजीद कहा कि यूरोपीय यूनियन उन लोगों के हाथ बांधने की कोशिश कर रही है जो अपना दिफा करते हैं। यूरोपीय यूनियन के वज़ाय खारजा ने गुज़िश्ता रोज़ नई पाबंदियों पर इत्तफाक किया जो हंगरी में हुकूमत की तब्दीली के बाद मुमकिन हो सका है, जिसने महीनों से जारी इस रुकावट को ख़त्म कर दिया। यूरोपीय यूनियन की आला सफारतकार काजा कालास ने कहा है कि ये वक्त था कि हम तातुल से निकल कर अमली इकदाम की तरफ बढ़ें, इंतहा पसंदी और तशद्दुद के नतायज बरामद होते हैं। फ्रांसीसी वजीर खारजा यान नोएल बारो ने कहा कि यूरोपीय यूनियन इन अहम इसराइली तंजीमों और उनके रहनुमाओं पर पाबंदियां लगा रही है जो मगरबी किनारे में इंतहा पसंदाना और पुरतशद्दुद आबादकारी की हिमायत के मुजरिम हैं। इस फैसले के तहत 7 गैर कानूनी आबादकारों या तंजीमों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वैंकूवर ने इसरार किया कि आबादकारी के मंसूबे को डराया नहीं जा सकेगा और उन्होंने आज़म जाहिर किया कि वो पूरे इसराइल की सरजमीन पर तामीरात और दिफा का सिलसिला जारी रखेंगे। इसराइली पार्लियामेंट कनेसेट ने 11 मई 2026 को होने वाली राय शुमारी के जरिए एक मुतनाज़िया तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है जिसके तहत ज़ेरे हिरासत फ़लस्तीनी कैदियों को सजाए मौत देने की राह हमवार हो जाएगी। कातिल इसराइली पार्लियामेंट ने इस कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है जिसके नतीजे में मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ में कैद तकरीबन 300 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा सकेगा। पार्लियामान के जनरल असेंबली इजलास में 93 अरकान ने बिल के हक में वोट दिया जबकि मुखालफत में कोई वोट नहीं डाला गया और ना ही कोई रुकन गैर हाजिर रहा। इस इकदाम से फ़लस्तीनियों को सजाए मौत के जरिए कत्ल करने का रास्ता साफ हो गया है। शफाक इसराइली पार्लियामान ने फ़लस्तीनी कैदियों के लिए सजाए मौत तजवीज़ करने वाले इस मुतनाज़िया बिल की पहले ही इब्तदाई मंजूरी दे दी थी। इस कानून के मुताबिक इसराइल के वजूद से इनकार के मकसद के तहत किसी इसराइली या मुल्क में मुकीम किसी भी शख्स को कत्ल करने के इल्ज़ाम में जुर्म साबित होने पर सजाए मौत दी जा सकेगी। बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने खबरदार किया है कि यह कानून ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है और ये बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है।
1: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: मकबूजा मशरकी अलकुस के कस्बे अल अजीरिया में इसराइली फौज के दस्तों ने फलस्तीनियों की 40 तजारती दुकानों और कारोबारों को मुसम्मार कर दिया है। फलस्तीनी इंतजामिया के तहत अलकुस इंतजामिया की जानब से जारी करदा बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह मुसम्मारी मई के वस्त तक नाफिजुल अमल हुक्म इम्तना के बावजूद की गई है। इलाके के फ़लस्तीनी मकामी हुकाम ने मुसमार की गई दुकानों को दर्जनों ख़ानदानों की गुजर बसर का वाहिद जरिया करार देते हुए इस सूरत हाल को मुआशी कत्ल आम करार दिया है। इत्तलात के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान इसराइली फ़ौजों ने मकामी रिहायशों पर सौती बमों और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। कहा जा रहा है कि ये मुसमारियाँ ईवन यहूदी बस्ती के मनसूबे की तैयारियों का हिस्सा हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि ये इकदामात फ़िलिस्तीनियों के रहने की जगहों को महदूद करने की एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का नतीजा है। अक़वामे मुत्तहिदा की एक टास्क फोर्स ने खबरदार किया है कि अगर खादों को अपने हुर्मुज़ से जल्द गुजरने की इजाज़त ना दी गई तो लाखों अफराद को फाका कशी और कहत का सामना करना पड़ सकता है। अक़वामे मुत्तहिदा के दफ्तर बरए प्रोजेक्ट सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉर्ज मोरेरा दे सिल्वा ने कहा है कि दुनिया के पास इससे बचने के लिए सिर्फ चंद हफ्ते हैं जो एक बड़े इंसानी बहरान में तब्दील हो सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि मज़ीद 43 मिलियन अफराद फाका कशी और कहत की लपेट में आ सकते हैं। एक तहकीक के आदाद और शुमार के मुताबिक ईरान के साथ अमरीकी इसराइली जंग ने अमरीकी शहरियों को तवानाई की इजाफी कीमतों की सूरत में 37.4 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान पहुँचाया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के ईरान वॉर एनर्जी कास्ट ट्रैकर का कहना है कि 28 फरवरी से जब अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया अमरीकियों ने इजाफी अखराजात के तौर पर 37.4 डॉलर से ज़्यादा अदा किए हैं। माफ़ कीजिएगा 37.4 अरब डॉलर से ज़्यादा अदा किए हैं। डेटा हकीकी वक्त में अपडेट हो रहा है और मजमू रकम हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है। इजाफी लागत का बड़ा हिस्सा यानी 20.41 अरब डॉलर पेट्रोलियम की मद में अदा किया जबकि डीजल तकरीबन 17 अरब डॉलर बनता है। अमेरिका के औसत

0: ने माहाना पेट्रोल और डीजल दोनों पर औसतन 285.10 डॉलर ज्यादा अदा किए हैं। मंसूबे के सरबराह जेफ कॉलगन ने कहा, ये एक ऐसा खर्च है जो बराह रास्त अमरीकी सार्फिन की जेब से निकल रहा है। जंग और ईरान के जवाबी इकदाम के तौर पर इंतहाई अहम हुरमुज गुजरगाह को बंद करने के अमल ने आलमी तवानाई की कीमतों को तेजी से बढ़ाया है। आज अमरीका में औसतन 1 गैलन पेट्रोल की कीमत 4.52 डॉलर है, जो जंग के आगाज पर कीमतों के 3 डॉलर से कम होने के मुकाबले में 50% से ज़ायद है। आब नए हुरमुज दुनिया के सबसे अहम समंदरी गुजरगाहों में एक है। स्पेन की वजीर सेहत ने बताया है कि हुकाम की जानब से MV होंडस क्रूज जहाज को खाली कराने का अमल मुकम्मल होने के फौरन बाद एक हिस्पानवी मुसाफिर में हंटा वायरस की तस्दीक हुई है। वजीर सेहत मोनिका गार्सिया के मुताबिक इस मुसाफिर में बीमारी की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई हैं, जबकि दीगर 13 हिस्पानवी शहरियों के टेस्ट भी मनफी आए हैं। ये तमाम अफराद मैड्रिड के एक फौजी हस्पताल में करंतीना में हैं। आखिरी मुसाफिर के उतरने के बाद यह जहाज़ गुज़िश्ता रोज़ स्पेन के कैनरी जजायर से नैदरलैंड्स के लिए रवाना हो गया है। इस वबा से अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं और आलमी सतह पर 8 वाकयात की तस्दीक हो चुकी है। इन वाकयात में पेरिस में इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल एक फ्रांसीसी खातून और एक अमरीकी शहरी शामिल हैं, जिसमें मामूली अलामत के बाद वायरस की तस्दीक हुई है। नैदरलैंड्स में एक मुतासर मरीज के इलाज के दौरान तरीक़ाकार की गलतियों के बायस हस्पताल के 12 मुलाजमीन को हिफाजती करंतीना में रखा गया है। गार्सिया ने बयान दिया है कि 23 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 125 अफराद को 2 दिनों में निकालने के बाद इनखला का मिशन मुकम्मल हो गया है। जहाज पर इस वक्त अमले के 25 अरकान, 2 तिबी अमला और एक जर्मन मुसाफिर की लाश मौजूद है, जिसका इंतकाल सफर के दौरान हुआ था। इम्कान है कि जहाज सफाई और जरासीम कुशी के लिए 17 मई को रॉटरडैम पहुंचेगा।
1: नाइजीरिया में लस बुहार की वबा इंसानी जानों के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। साल के आगाज से अब तक इस मौजी बीमारी के बाईस जान बेहक होने वालों की तादाद 190 हो गई है। हुकाम के कहना है कि इस साल शरह अमूमत में गुजशत बरस के मुकाबले में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जो अब 50% से तजावज कर चुकी है। याद रहे कि यह वायरस चूहों के फुसले से रबते के जरिए फैलता है और जानलेवा खूनी बुहार का बाइस बनता है। यह वबा खास तौर पर इन इलाकों में तेजी से फैल रही है, जहां तबी सहूलियात बर वक्त मैसर नहीं। हुकूमत ने आवाम को सख्त ताकीद की है कि वो चूहों और कुतरने वाले दीगर जानवरों से दूर रहें और तेज बुहार की सूरत में फौरी तौर पर करीबी तबी मरकज से रुजू करें। वाज़ेह रहे कि नाइजीरिया में इस बीमारी की शिद्दत के बाइस जनवरी 2019 से ही हंगामी हालत नाफिज है। इसके साथ ही सदाई तुर्की से हमें खत्म हुई।

ज़िंदगी में वो क्या है जो वापस नहीं लिया जा सकता। माजी के दानिशमंदों ने इनको चार अशिया में दर्ज किया है, चलाया गया तीर, बोला हुआ लफ्ज़, ज़ाया किया हुआ मौका और शायद सबसे अहम बात यह कि गुज़रा हुआ वक्त। चाहे हमें इसका एहसास ना हो, जबकि रोज़मर्रा के मशगूल में हमें मसरूफ़ रखते हैं, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम सीखते हैं कि वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि गुजरे हुए वक्त को वापस लेना मुमकिन नहीं है, यही वजह कि ज़माने कदीम से लेकर आज तक लोग वक्त को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने और इसे मखसूस वक्फों में तकसीम करने की कोशिश करते रहते हैं। सालों, महीनों और दिनों तक इस सिलसिले में हमारा सबसे बड़ा मददगार घंटा होता है। आज अगरचे हम अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर डिजिटल डिस्प्ले के ज़रिए वक्त के बहाव की पैरवी करते हैं, लेकिन जो घड़ियाँ अपनी कलाइयों पर पहनते हैं या अपने घरों और काम की जगहों की दीवारों पर लटकती हैं, वो हमारी ज़िंदगियों से मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुई हैं। तो पहली घड़ी किसने ईजाद की? हम असल में इसका सवाल का जवाब नहीं जानते, लेकिन मुख्तलिफ जुग्राफियों में मुख्तलिफ तहज़ीबों ने वक्त को मुख्तलिफ पक्फों में तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके वज़ा किए हैं। इनमें से पहला घड़ियाल जो मिस्र में 4000 कबल मसीह में इस्तेमाल हुआ था, धूप के बाद पानी, मोमबत्ती और रेत की घड़ियाँ बनी थी। ये सब अपनी उम्र की अहम ईजादात थी, लेकिन जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ी और शहर की ज़िंदगी शुरू हुई, ये कदीम साइंसी हल ज़रूरियत को पूरा करने से भी कासर हो गए। पहली मकैनिकल घड़ियाँ 1300 की दहाई में नमूदार हुई और वक्त के साथ साथ इनमें बेहतरी लाई गई। जर्मन पीटर मेंडेलन ने मेन स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हुए तारीख की पहली समेटने वाली घड़ी तैयार की। अगरचे उन्होंने सही वक्त नहीं दिखाया, लेकिन लोग इन घड़ियों को अपनी जेब में ले जाने लगे। अतारी मौजूद गलीलों से लेकर जॉन हैरिसन तक बहुत से साइंसदानों ने भी घड़ियों के बारे में सोचा, लेकिन इन इजादात में एक छोटी सी खराबी थी। इनमें से किसी ने भी लोगों को इनकी मीठी नींद से बेदार करने में मदद नहीं की थी। अलार्म घड़ियाँ शायद दिन की सबसे अहम लेकिन परेशान किन घड़ियाँ हैं, जिनका इस्तेमाल हम सुबह अपने गर्म बिस्तर से उठकर स्कूल, काम या कहीं और जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगरचे हम हर सुबह 5 मिनट की तखीर करके कुछ और सोना चाहते हैं, अलार्म घड़ियाँ ख्वाह मकैनिकल हों या डिजिटल, हमारी ज़िंदगी का एक नागुजीर हिस्सा है और एक मजबूरी ज़रूरत की हासिलती ईजाद भी है। घड़ी सास लेवी हिचिस, जो 1761 में अमेरिका में पैदा हुए, एक ऐसा शख्स था जिसे सुबह बहुत जल्द उठना पड़ता था और साथ ही वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता था और वो हर सुबह काम पर देर से पहुंचता। हिचिस का ख्याल था कि वो अपने घर के करीब चर्च की घंटी की मदद से इस मसले को हल कर सकता है, जो उसे हर सुबह जागने में मदद देती है। वो अपनी सवानी उम्र में इस लम्हे को बयान करते हुए लिखते हैं कि मेरा ख्याल एक आवाज़ के अलार्म को डिज़ाइन करना था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। तब मुझे अपने घर के साथ वाले चर्च की घंटी याद आई। मैंने एक बड़ा डिब्बा बनाया और अपने तांबे की घड़ी का मैकेनिज्म वहाँ घर पर रखा। नाखून और गेयर का इस्तेमाल करते हुए मैंने मैकेनिज्म को छोटी घंटी से मुंसलिक कर दिया। जब घड़ी का घंटा 4 बजे तक पहुंचता तो उसने दांतों वाले कील को ज़ोर से धक्का दिया और कील घंटी से टकराई, लेकिन ये एक ही ज़र्ब इतनी ज़ोर से थी कि घंटी की आवाज़ बहुत बुलंद हुई और मैं जाग गया। हिचिस जो घड़ी के मेन स्प्रिंग सिस्टम और लकड़ी के एक बहुत बड़े डब्बे में छोटी घंटी को इकट्ठा करने में कामयाब रहे थे, ने भी छोटी सी गलती की। उसकी नई ईजाद अलार्म घड़ी दिन में एक बार बजती और सिर्फ सुबह 4 बजे, ये तरीक़ाकार दीगर औकात के लिए नाकाफ़ी था। तहाँ लेवी हिचिस की इस ईजाद ने, जिसने नींद से बेदार होने का रास्ता तलाश किया, शहर के वासियों और किसानों दोनों में खासी तवज्जो मबजूल कराई, क्योंकि इन सालों में अमरीका में कारोबारी ज़िंदगी बहुत जल्द शुरू हो जाती थी। ख़ास तौर पर दही इलाकों में रहने वालों के लिए लेवी हिचिस ने कभी अपनी ईजाद को पेटेंट नहीं करवाया, लेकिन कई सालों तक अलार्म घड़ियाँ तैयार करते रहे।
وقت گزرنے کے ساتھ انجینئر بہتر کیا اور ہر چیز کے سادہ میکنزم کو چھوٹا کر دیا اور پیٹنٹ فرانسیس شہر انٹون ریڈی کو دیا گیا جس نے پہلی ایڈجسٹ کرتے ہونے والی مکینیکل گھڑی ایجاد کی اور ونڈ اپ الارم گھڑیاں کئی سالوں تک ہمارے گھروں کا ایک لازمی حصہ بن گئی. ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہ گھڑیاں برسوں تک اپنے خاک آلود شیلف پر رکھ دی ہوں, لیکن لیوی ہچز کی ایجاد آج ہمارے موبائل فون کے اندر چھپی ہوئی ہے اور ہر صبح ہم اپنے گرم بستر سے جگاتی بھی رہتی ہے. سامع اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب اپنے میزبان فرقان حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.